जी महाराज जी है कि नीवियां जातां वालियां नूं सिखी स्वरूप दे के अपने वर्गा बना लिया। आनंदपुर साहब दे लागे पहाड़ी राजे सन। एक वारी पहाड़ी राजियां विच अजमेर चंद बड़ा ताकतवर राजा सी। इसनु पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कोल तकरीबन 700-800 सिंघां दी फौज है। इस वेले गुरु साहिब नु खत्म करना बड़ा सौखा है। अजमेर चंद ने सलाह करके एक चिट्ठी गुरु साहिबां नु लिखी, महाराज असी चाहने हां कि तुसी शिकार ना खेडो, रणजीत नगारा ना वजाओ, तुहाडे सिंह साडे आदमियां नु कई वारी कुट के चले जांदे ने, उन्हां नु रोको, नहीं तां फिर सानू लड़ाई करनी पवेगी। एक पासे ए चिट्ठी भेजी ते दूसरे पासे लड़ाई दी तैयारी भी कर दीती। ए चिट्ठी गुरु साहिबां दे दरबार विच पहुंची तां साहिबां ने जवाब लिखिया, अजमेर चंद सानू परमेश्वर ने इस दुनिया विच भेजे है संतां दी रक्षा करन वास्ते, दुष्टां दा नाश करन वास्ते। असी लड़ाई नहीं चाहते, ते जेड़े सिंह ने ए शेर ने, जद शेर नू को तंग करे ते फिर शेर ओनू सोधना भी जानता है। साडे सिंह किसे नू नजायज कुछ नहीं करते, ना कुछ कहते ने, पर जदों कोई ओना नू छेड़े ते फिर ओना नू ओ सोधना भी जानते ने। असी लड़ाई नहीं चाहते, पर तुहाडी इच्छा जे लड़ाई दी है असी लड़ाई वास्ते भी तैयार हां। ए चिट्ठी गुरु साहिबां दी जदों पहुंची उस वक्त तक अजमेर चंद अपने होर साथियां नाल अपनियां फौजां लै के आनंदपुर साहिब ते चढ़ाई कर चुका सी। गुरु साहिबां नूं पता लग गया, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने विचार कीती, शहर दी रक्षा कीती जाए। 3-4 मील आनंदपुर साहिब तों बाहर आके एक ऊंची जगह गुरु साहिबां ने भी

गुर अंगद की ते कुमारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के नाम विचारे।

हमारी जेहबा एक रंग हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे आ हर तुम बड अगम अथाह।

जपे हर मंदिर साजिया हर मंदिर साजिया संत भक्त गुण गावे राम हर मंदिर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते हमें अपराधी तुम बख्शाते जिस पापी को

0: कसम बेनती कृपा कसम
1: बेनती शरण बेनती बेनती हर कृपा कर
2: निधर हिरे नरे निधर हिरे नरे।

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी पई है।

उस मालक दा नौकर मुस्कुरा पिया। मुस्कुरा के अपने नौकर नू हां जोगी राज जुड़िया होया, पर परमेश्वर दे नाल नहीं, अपनी लोहे दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा लोहे दी संदूखड़ी नाल।

साहबा ने उस वक्त ए शब्द उचारिया, काल नाही जोग नाही नाही सत का डब, थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग। कोई जोग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच नहीं, इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट हुंदी जा रही है, ए सारा संसार डूबता जा रहा है। कल मैं राम नाम सार ए भाई पखंड छड़ दियो, कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने सहाय।

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जद के तेनू ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नू की समझ

पाछे कछु ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नू क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नू कहना है।

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन। उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ए बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई,

मैं ता मथा टेकिया कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनू देख लिया ते उची सारी अपने साथियों नू क्या नारायण मतलब के कोई बंदा आया उदी आवाज सुन के दूसरे ने क्या दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगती ते तीसरे ने क्या बिंदरा बन वो कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोना ते काम इन्ने माड़े ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इउं बयान कर

गली जिना जप मालिया जिना ने गलां विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी बग ते हथां दे विच चिटे चमकदे हुए लोटे फड़े हुए ने।

साहब कहन लगे एहो जे संत चंगे नहीं लगते जेड़े डाला कहंदे ने टाणियां नूं पेड़ा दरख्त नूं गटकावे खा जाना कि जेड़े टाणियां समेत ही दरख्त नूं खा जांदे ने भाव के माया पिछे इंसान

बसुदा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के

ए अपराधी ने मुखों अपरस कहावै पर लोकां दे कोलों अपने आप नूं बड़े वड्डे बड़े उच्चे ते सुच्चे पंडित अखवांदे ने।

अभिमान दे भरे होए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डोब लैंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया,

इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया, गल्ला बातां करदा रहा। बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया वो सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांस

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

के रंग बड़ा सोहना पर खांदा की ये कीड़े ते मकौड़े ऐसे ही ठग दियो बखाने इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्बे लम्बे चोले बनाए हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे असीं त्यागी पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े इसे तरह ए संत चोले ता लम्बे लम्बे पाए ने चिट्टे रंग दे पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह ए विकारां दे भरे होए ने।

मेरे गलों ये झगड़ा ला ले है भाई मैं पखंड नहीं करदा उस परमेश्वर दा नाम जपे है ओदे नाल मिल गया है भाई तुसी भी मन करके ओदा नाम जपो तुसी भी इना पखंडा

पर परमेश्वर दे नाम दे लागे नहीं जांदा। एक महापुरुष अपनी श्रद्धालु दे घर कुछ समा रहे तुरन लगे ते घर वालिया ने रस्ते वास्ते महापुरुषां लई चार आलू दे परौंठे बना दिते। महापुरुष तुरे एक लालची हग जिहड़ा सी उन्हें देखिया कि महापुरुष अपने श्रद्धालु दे घरों बाहर निकले ने, इन्हां कोल जरूर माया होवेगी ते इन्हां दे नाल ही चलना वा इन्हां दा सेवक बन के, जदों दा लगा माया कढ लवांगा। महापुरुषां नूं कहण लगा, ऐ महापुरशो मैनू अपना सेवक बना लो, मैनू भी अपने नाल लै चलो, मैं तुहाडी सेवा करांगा। महापुरश कहण लगे, चंगा भाई, नाल तुर पिया। तुरद्या तुरद्या दोपहर हो गई, एक नदी आई। उस नदी दे किनारे महापुरश खलो गए। कहन लगे, भाई मेरा चित करदा है मैं इशनान कर लवां। महापुरुषां ने कपड़े लाए, इस लालची ठग नूं अपने कपड़े दे के कहन लगे, तू कपड़े संभाल ते मैं जरा इशनान कर लवां। कहन लगा, महापुरशो तुसी फिक्र ना करो, मैं चंगी तरह संभाल करां। महापुरश ते नहाण चले गए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰੌਂਠੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, कपड़े पाए। कहन लगे, आ भाई तेनू भी भुख लगी होनी है,

कपड़ा भी बड़ा सोहना है पर रंग पक्का होना चाहिए। इसी तरह मनुख दे रंग उस वाहिगुरु ने दिते हैं। मेरे गुरु पातशाह आख देने कोई जुआ खे

कोई किसी रंग विच है, कोई अमली है, कोई शराबी है। बाबा जी कहते ने आप नहीं, उस वाहिगुरु ने रंग दिते हैं, पर ये रंग सारे कच्चे हैं। एक होर पक्का रंग है, वो केड़ा मेरे पास क्या खाते।

सुत अखर किने राम नाम एक अखर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उतारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहो प्रभ कह सिमरन गर्भ न बसे प्रभ कह सिमरन दुख जम न सह प्रभ कह सिमरन काल पर हरे प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे प्रभ कह सिमरन अनदिन जागे प्रभ कह सिमरन पौ न व्यापे प्रभ कह सिमरन दुख न संतापे प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कह सिमरन जप तप पूजा प्रभ कह सिमरन बिन सह दूजा प्रभ कह सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कह सिमरन दरगह मानी प्रभ कह सिमरन होए सो पला प्रभ कह सिमरन सो फल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कह सिमरन उदरे मूचा प्रभ कह सिमरन तृष्णा बूझे प्रभ कह सिमरन सब किच सूझे प्रभ कह सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कह सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से पतवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ को सिमरे से परिउपकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ कह सिमरन कारज पूरे प्रभ कह सिमरन कबू न चूरे प्रभ कह सिमरन हर गुण बानी प्रभ कह सिमरन सहज समानी प्रभ कह सिमरन ने चले आसन प्रभ कह सिमरन कमल विगासन प्रभ कह सिमरन अनंत चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरे से जन जिन को प्रभ मेया नानक तिन जन सरनी पिया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेर उपाए हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौकुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना।

भगत नामदेव जी अपने शब्द विच ये दसदे हन कि दुनिया के काम करदे हां परमेश्वर का नाम

तू कहनी नाम ना जाप जा मैं तेरा पुत्र ही नहीं ते ना तू मेरी मां है ए पिंड ए शरीर खत्म हो जाए।

तू हसदा खेड़दा नहीं, बड़ा उदास रहने। जेड़ा नाम तेनू हसन खेड़न नहीं देंदा, बेटा तू उस नाम नू वसार क्यों नहीं देंदा। तां तां गुरु नानक साहब दी अखां विच जल भर आया ते कहन लगे, मां आखा जीवा।

जे मैं नाम जपना वा ता जीना, जे नाम नहीं ते फिर नानक भी नहीं। आखा जीवा

वैद ने हाथ जोड़ ले कहिंदा ऐ नानक मैं ता तेनू कुछ और समझिया सी पर तू ता आप रब निकले जेड़े दुख तू दसे ने इन्हां दुखां दी दवाई मेरे कोल किथे ऐ नानक पातशाह मेरी ते कृपा कर मेरे मन नू बड़े रोग लगे ने मेरे मन दे रोग दूर कर। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं अब मुझ परे करना करिए मन के रोग सगल पर हरिए ऐ पातशाह मेरे ते कृपा कर जेड़े मेरे मन दे रोग ने इन्हां नू दूर कर।

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

भाई साहब ने अगली गल बड़ी कमाल दी कही है। कहंदे ने हार चले जेड़े भगतां नाल ईरखा करदे ने, भगतां नाल द्वैत करदे ने। भाई साहब कहंदे ने मालिक उन्हां